Nadie te llama por truco. अगर पुत्र सत्य धर्म के रास्ते पे होगा तभी तो वह अपने देश को सत्य धर्म के रास्ते पे ले जाएगा, तभी तो देश प्रगतिशील होगा। लेकिन खाली बोलने से नहीं होता कुछ, विचार कीजिएगा जरा आप। शास्त्र क्या बोलते हैं? मातृ देवो भवा, पितृ देवो भरा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। सर्वप्रथम माता को देवता का रूप माना गया है। माता एक देवी है, माता परमात्मा है, देवी नहीं, परमात्मा का साक्षात रूप है। अगर भगवान ने किसी को अपने रूप में बनाया है तो मां है वो। कहते हैं मां का जो मुख है वो प्रेम की मूर्त है, मां के दो हाथ हैं, एक निर्भयता देता है, एक वरदान देता है, मां की दो आंखें करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं, मां का हृदय अमृत की धारा है, मां के दो चरण ममता और समता देते हैं। कहते हैं मातर ईश्वर अम्मा गांव में रहती थी, गरीब घर में या गरीबी में थी, उन्होंने एक बार देखा कि गांव में पानी की बड़ी समस्या है। हुआ यूं कि उन्होंने देखा एक अवला, एक स्त्री दो तीन मटके पानी भर के मीलों चल के आ रही है, नंगे पांव कड़कती धूप में। बेचारी की तबीयत खराब थी। बातों बातों में स्त्री ने बोला, मां मैं तो अकेली, मेरे को बच्चे नहीं है, मुझे सारा काम स्वयं करना पड़ता है, मुझे मीलों चल के जाना पड़ता है रोजाना के लिए पानी लाने के लिए। कैन यू इमेजिन, यहां पर अगर आपके घर में एक दिन नल में पानी ना आए आफत आ जाए आपको, बाजार में जाके बॉटल वाटर लेके आएंगे। हम उस गांव की चर्चा कर रहे हैं जहां पर जलाशय नहीं है, बहुत दूर है, सारे गांव के लोग दूर जाते हैं, मीलों चल के जाते हैं पानी लाने के लिए, प्रातःकाल दिन भर के लिए पानी भर के रखते हैं। माता ईश्वरम्मा का हृदय पसीज गया। आज के जमाने में क्या होता, सबसे पहले मन में विचार आता लेट्स डू द बिजनेस, हम व्यापार करते हैं, पानी बेचेंगे। पानी को बॉटल कर देंगे, पानी का व्यापार करेंगे। जो चीज परमात्मा आपको मुफ्त में दे रहा है, भगवान आपको नहीं बोल रहे मेरे को पैसे दो, मैं आपका पानी दे रहा हूं, मैं वर्षा कर रहा हूं, मैं बरसात कर रहा हूं, मैं नदियां बहा रहा हूं, हमें दया नहीं आएगी? एक गरीब आदमी सामने पानी के लिए तड़प रहा है, उसको पानी पिला दें? नहीं, वी वॉन्ट टू डू बिजनेस, हम व्यापार करना चाहते हैं। माता ईश्वर अम्मा का हृदय पसीज गया अपने पुत्र के पास, बोले सत्या बेटा एक काम कर सकते हो, क्या यहां गांव में कोई जलाशय बन सकता है, कोई कुआं खोद सकता है, गरीब लोग हैं, पानी नहीं मिलता है स्त्रियों को, कैन यू प्लीज डू दिस। कहते हैं भगवान बाबा ने जल का सूत्र बना दिया, कुआं खोद दिया वो बड़ा सा, जहां से सबको जल मिलने लग गया।

एक माता ईश्वरम ने देखा कि एक स्त्री बड़ी पीड़ा में है, दर्द में है, कोई वैद्यवा नहीं मिल रहा, कोई चिकित्सा नहीं हो पा रही, काफी दूर जाना पड़ रहा है लोगों को, पुट्टा पड़ती से बाहर, मेरे ख्याल से जगह का नाम था बुकापत्तनम। जरा आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए आंखें बंद करके कि गांव के लोग कहां जा रहे हैं। गांव के लोग नंगे पांव छोटा मोटा इलाज कराने के लिए मीनों पैदल चल के जाते हैं, घंटों घंटों पंक्तियों में बैठते हैं। मां का हृदय पसीजिया, बोले सत्या एक काम हो कर दो बेटा, गांव में कहीं पर कोई चिकित्सालय खुलवा दो। उसे कहा मां पैसे कहां से आएंगे, आप बोल तो दिया आपने आसानी से। कहते हैं ईश्वर अम्मा ने अपने गले में से जो उनके पतला सा हार था सोने का निकाल दिया, बेटा ये ले इसको बेच दे, पैसे बन जाएंगे थोड़े बहुत। हम क्या करते हैं? हम एक मीटिंग बुलाते, लोगों को बोलते हाउ टू ऑर्गेनाइज द फंड्स, किससे पैसा मांगे, कैसे पैसा मांगे, पैसा इकट्ठा करते, कैसे हम सरकार को बोले हमें पैसे तो थोड़े, सरकार से पैसा मांगे। लुक एट द एटीट्यूड ऑफ सर्विस। माता ने एक पल में अपने गले से हार निकाला, पुत्र के हाथ में दे दिया, लो बेटा इसको बेच दो। कहते हैं भगवान बाबा ने एक छोटा सा चिकित्सालय बनाया या जनरल हॉस्पिटल बनाया पुट्टपर्ती में। पुट्टपर्ती के बच्चे पढ़ने जाते थे बहुत दूर गांव से, कड़क थी गर्मी में, 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों में, मे बी मोर। एक तो गरीब बच्चे, पहनने को कपड़े एक जोड़ी कपड़े होंगे मुश्किल थे। भगवान स्वयं कहते हैं जब विद्यालय जाते थे उसी कमीज को शाम को घर में धोते थे फिर पहन लेते थे। बाय द वे, कभी अपने घर में वार्डरोब में झांक कर देखना कितने कपड़े हैं आपके पास, आपके पास आपको हैरानी होगी, ऐसे कपड़े मिलेंगे जिनको आपने बहुत दिनों से देखा भी नहीं है, पहनने की बात तो दूर है, आपको पता भी नहीं होगा, याद भी नहीं होगा कि आपके वो कपड़े पड़े हुए हैं। अरे ये शर्ट भी मेरे पास है, मैंने तो खोली भी नहीं, पहनी भी नहीं। आप घर में एक दिन मेहमानी करके गिन के देखिए, कम से कम 20 कमीजें तो होंगी होंगी आपके पास, 10-12 पैंटें भी होंगी, और कितने कपड़े ऐसे पड़े जिनका पहनते नहीं है। और दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति जिसके पास एक जोड़ी कपड़े हैं उन्हीं को सुबह पहनता है, शाम को धोता है, फिर अगले फिर पहन लेता है। संसार में कोई चीज की कमी नहीं है, जस्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। वो क्यों? क्योंकि हम लालची हैं, वी आर सेल्फिश पीपल, हम सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। वहां बच्चे बेचारे विद्यालय जा रहे हैं कि दूर दूर नंगे पांव। माता ने एक और विनती कर दी, विनती क्या, बच्चे को आदेश दे दिया, बेटा इस गांव के अंदर कोई विद्यालय का इंतजाम करो। कहते हैं भगवान बाबा ने वहां विद्यालय बना दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटा सा विद्यालय साईं यूनिवर्सिटी बन गया। बच्चा वहां पर जाता है किंडरगार्टन से लेके पीएचडी करके निकल सकता है, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। 700 गांवों तक पीने का पानी पहुंचा दिया आंध्र प्रदेश में, 24 hours a day 7 days a week। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया पुट्टपर्ती में, जहां पर बड़े बड़े रोगों का इलाज मुफ्त में होता है, एब्सोल्युटली फ्री।

Can't you imagine? ये सारी प्रेरणा कहां से आई? माता ने अपने पुत्र के अंदर ये प्रेरणा डाली. इसलिए उस देवी को ईश्वर अम्मा कहा जाता है, ईश्वर की माता. भाइयों बहनों, एक बात को गांठ बांध के रख लो कि माता का ऋण आप कभी भी अदा नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए. व्हाटएवर हैपेंस, मां मां है. सारे दुख सहकर भी अपने पुत्र का भला चाहती है. और जिस मां ने अपने पुत्र को समाज के लिए तैयार कर दिया, वो धन्य है. धन्य है ईश्वर अम्मा, मेरे साहिब को तुमने जन्मा. माता के और रूप भी हैं. जो मां आपको जन्म दे, जननी. गाय को भी माता कहते हैं, आपको दूध पिलाती है. वो अलग बात है, हम गाय को मार के बेच देते हैं, उसका मांस बेच देते हैं, खा लेते हैं कई लोग. गाय माता का गोबर का प्रयोग होता है, मूत्र का प्रयोग होता है. गंगा को भी माता कहते हैं, आपको अमृत देती है. गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, आप चाहे घर में भर के रख लें, सालों साल पड़ा रहा, खराब नहीं होता. धरती भी तो माता है. सारा खाना कहां से आ रहा है? धरती से उग रहा है. अन्न दे रही है, उसके लिए जल चाहिए. वह सारे जल वहां जा रहे हैं, अन्न उग रहा है. लेकिन हम धरती को प्रदूषित कर रहे हैं. जहां जहां रिवर्स हैं, जहां पर नदियां हैं, जहां समुद्र है, तो हम खराब कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं. वेदों को माता कहा गया. वेद आपको ज्ञान देते हैं. ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ तक मोक्ष का द्वार भी बता देते हैं. मोक्ष तक लेके जाते हैं आपको, मोक्ष दिलवा देते हैं आपको. माता जानकी को भी माता कहा जाता है, पति भक्ति देती हैं. और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मातृभाषा, मदर टंग, कभी नहीं बोलते फादर टंग, मदर टंग, मातृभाषा. क्या हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा बोलते हैं? क्या उनको अपनी मातृभाषा का व्याकरण मालूम है, ग्रामर मालूम है? क्या अपनी मातृभाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा. आप बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चे के अंदर अंग्रेजी के शब्द ठूसना शुरू कर देते हैं. बेटा कम कम कम यार कम. माता ईश्वर अम्मा ने भगवान बाबा के अंदर एक बात डाल दी. भगवान बाबा जब भी प्रवचन देते थे तेलुगु में देते थे, हालांकि दुनिया की सारी भाषाओं का ज्ञान उनको था, लेकिन बोलते तेलुगु में थे, मातृभाषा में. ना उन्होंने अपनी मातृभूमि छोड़ी, ना अपने गांव को छोड़ा, पुट्टपर्ति को, ना देश को छोड़ा, ना भाषा छोड़ी, ना माता को छोड़ा. वेदों की उन्होंने चर्चा करी, वेदों की सेवा करी, आचार्यों की सेवा करी, गायों की सेवा करी, मां की सेवा करी, अपने देश की सेवा करी, अपने गांव की सेवा करी, गांव वासियों की सेवा करी. विचार कीजिएगा. कहते हैं, जहां तक मुझे याद है, 6 मई 1972 का दिन था शायद, भगवान बाबा ने रास्ता किया होगा, उनका आवाज सुनाई दी, स्वामी स्वामी स्वामी. बाबा बोले, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग. भगवान बाबा को अपनी मां की आवाज सुनाई पड़ी, स्वामी स्वामी स्वामी स्वामी. बोले, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं. ओ माता ईश्वर अम्मा ने शरीर त्याग दिया. स्वर्गवास हो गया उनका.

0: बाबा ने निर्देश दे दिया इनके अंतिम यात्रा की तैयारी की जाए और स्वयं वृंदावन में जो व्हाइट फील्ड में है बेंगलोर के पास वहाँ पर से दर्शन देने चले गया। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ईश्वर अम्मा, इसलिए 6 मई को ईश्वर अम्मा डे कहा जाता है, चिल्ड्रन डे कहा जाता है, बच्चों का दिन। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे खेल कूद रहे हैं, ये माता और पुत्र का एक रिश्ते को समझा रहा है आपको। दिन तो बच्चों का है लेकिन बच्चे तो मां के ही है ना। बता रहे हैं बच्चों का दिन है, बच्चों के अंदर संस्कार डालना आरंभ कर दो। ये कार्यक्रम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कर्तव्य सबसे पहले मां का है, हालांकि पिता का भी है, भाइयों का भी है, बहनों का भी, सभी का है। प्रत्येक माता अपने बच्चों के अंदर कम से कम तो अच्छे संस्कार डाले, सत्यम वदा धर्म चरा, या सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा के गुण अपने बच्चों के अंदर डाल दे, केवल इतना ही कर दे। सर्व संसार में प्रेम और शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। मां के मस्तक को ऊंचा करना बहुत गौरव की बात है, इससे बड़ा गौरव और दुनिया में कुछ नहीं है। परमात्मा को पाना भी वो गौरवशाली नहीं होगा, लेकिन मां के मस्तक को हिमालय की ऊंचाई तो ले जाना बहुत बड़ा गौरव है। प्रयास कीजिएगा भाइयों। जय सायराम। 104.6
1: Planet FM. Sushika Dhanpar. The Konkani radio station of Auckland on 104.6 Planet FM.
2: Join the good guys.